0: पात्र वर्ग जुड़ेत नेलविटा नोरोन्ना जिल्फा जुड़ीत सकर्ण क्लिटा नोरोन्ना नेबुकडनेजर अस्सीरिया सोराय रोशन डिसोजा होलोफेरनेस अस्सीरिया रायसो सेनाधिपति लेस्ली फेरावो अस्सीरिया सैनिक रोशन फोनसेका निशान डिसिल्वा अने स्टालोन डिसिल्वा उज्जिया बेथुलिया सो मुकेली रॉय सिक्वेरा काब्रिस प्रकाश फोंटेरो कार्मिस विजय मिरांदा बेथुलियाचे सैनिक मैक्लिन फर्नांडिस अने एलेर अक्योर अमोरितनसो सेनाधिकारी नीलेश रस्कीना नास मरुला गिब्सन दिव्या पेन्ना विजेता आल्फ्रेड टीना पशावो संगीत साइमन पाइस बजाल उजवाड क्रिस्टी आवाज अजित इलेक्ट्रिकल्स जप्पो वेस पिंत्रावणे गिरियप्पा इडिया समाज सूचक ग्रेट्टा करवालो अने मरिटा डिसोजा सहकार मना देख मैक्सिम सोजो विगार जप्पो फिरगस रचन मना देख बाप रोनिस सेराओ निर्देशन ऑलविन मिरांदा जप्पो
1: आतामी जुडी या नाटकसो मुकर सिलो वांटो ऐकूया.